श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं चौकजाती कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM पर या तो www.diversefm.com पर। प्रश्न ये छे, घर में छे पण घर नथी, घर में छे पण ई घर नथी। बीजो एक जवाब आवेलो छे, ताड़ू। नॉट बेड, खराब ना कहवाय। एक्सट्रीमली हॉट। अच्छा अच्छा, गरम में गरम कहवाय, एम गरम चा आवती होय ने एवी रीते। आप सुन रहे छो गीत माला। खोटो जवाब छे। अपनी पास जवाब हो तो 0756868683 या तो 0158272500 725 ऑप्शन 2 चूज करजो। आप सांभ्या छो गीतमाला, लकीरो तो सांभळ्यो, हवे सांभळीए एक पंजाबी गुजराती सगाई गीत।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं गुजराती कार्यक्रम गीतमाला 102.8 FM पर या तो www.divasfm.com पर। गीतमाला कार्यक्रम दर गुरुवार आपने समझ रजूआत करने पूरी कोशिश करी है। धन्यवाद आपना संदेश अनेक जातना संदेश बदल जुदा जुदा आता हुए ते बदल खूब खूब आभार। अभी ज रीते आता गुरुवार फरी पाचा आपने सेवा में जाते जासू त्या सुधी शुभरात्रि कवायरी आवजो। बाय बाय। हेम केम रहो, सावधान रहो, स्केमर्स थी दूर रहो। शुभरात्रि।